0: हला हे तिलियाली हम आला थले बेले ई खाती हाले हम आला तिलियाली खाती आला हे के तिलियाली बा हले हले रेले वसुत बड़ा अडरवाली बा हे मेने ले थे बा खाती ला दे सोए नवत लदी अशुद्ध बल यीशु स्वांस के नाम में फले आओ
1: देखे रामा खाती दा रे तेरे बे
0: ई हमला के तियाले हमा
1: तेरे बे दे दे नवा खिदा हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले अमा तिलिया ले ओबरे सुति वेवा स्वामी इन वास ओबान सी उदाउ करन ने किने